गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जेड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

चोरी ठगी यारी दा पैसा एकत्र कर देन। साहब सच्चे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सच्ची दरगाह।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको

कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बन्नी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते सी

जपजी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो बिस्टा का किरम होए जन्म गवायो बाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथो सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी साहब दा पाठ।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भाई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भाई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भाई गुरसिख नूं वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नूं वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेडे पांच ककार दिते ने ना खालसे नू पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे वर्दी होवे उनू लाजमी है भी जदों ऑफिस विच जावे जदों काम ते जावे जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नू पहने। गरीब नू आज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नू पंज ककार बख्शे ने ते गरीब नू आज कहंदे मैं ए बर्दाश्त नहीं करांगा भी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे भी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू न होई।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिणिया जाए।

को पूत हां चढ़दी कला की बाणी देखो गुरु गोबिंद सिंह जी छतरी को पूत हां ब्राह्मण को ना है छतरी को पूत हां ब्राह्मण को ना है तैसा पे आवत हां जो करो और जंजार जितो गह को तो त्याग कहा जितता मैं धरो और जंजार जितो गह को तो त्याग कहा चितता मैं धरो अब रीझ के देहो वह हमको जब बेनती कर जोर करो जब आपकी आग निदान बने।

0: अस खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना
1: मेरा नाम गोबिंद सिंह। अस खिलौना।

0: जे तुमने ध्यान को
1: गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे साफ फरमाते
0: जे जे तुमने ध्यान नित उठ ध्याए है संत जे जे तुमरे ध्यान का नित उठ ध्याए है संत अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे
1: आप मुक्त मुक्त करे संसार आप मुक्त मुक्त करे संसार
0: नित जपिए सांस।

पार कर रहे सन एक अबला स्त्री उन्हां दे मगर मगर वेख्या नौजवान छाला मारदे होए नदी पार कर रहे ने ओ अबला स्त्री भी ओनू भी हौसला आया है ते पावे ओ निर्बल सी पर वेख्या इतने सारे नौजवान लंघ गए ने ते मैं नहीं लंघ सकदी ओने भी छाल मार के ते नदी जदों मारी छाल ते ओ भी पार पै गई। बाबा जी कहंदे ने महापुरुष नाम जपन वाले संत मानो नौजवान ने इस दुनिया विचों जित के जांदे ने पर तू अपने आप नू निर्बल समझ दें पर ओना नू वेख ओ पार पै गए ते तू किवें ना पार पएगा। एक वारी तू नाम जप संतां दी तरह तू भी मार दे छाल उस गोरी दी तरह तेरे मन विच भी धीरज आवेगा। बाबा जी कहंदे ने जे नहीं जपेगा मेरा तू सोना ही इकट्ठा करना है ते फिर अगे आरा तैयार है तेरे लिए जिदे नाल तेरे दो फाड़ कीते जाणगे। कहंदे ने

बच्चे नूं जुड़दियां छे महीने हुंदे ने। बाबा जी कहंदे ने वेखो इस दी तैयारी विच छे महीने लगदे ने, इक इक त्रोपा लगदा है, इक इक लत बांह नक अखां जुड़दियां हन। छे महीने त्रोपे लगदे रहंदे ने, जदों टुटेगा आवाज भी नहीं आनी, इको ही झटका लगेगा, इसने खत्म हो जाना। कहंदे

आश्रम गुरु नानक के शरीर के दर्शन करते, उनके चरणों की छो प्राप्त होती, इतने बड़े भाग होते हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कब आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार, ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

जानता है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

आख्या जे तू अकल लतीफ तां काले लिखना लेख कोई पाप ना कर कोई ऐसा उपद्रव ना कर तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आया है ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे चंगे गुण धारण कर जे औगुण वेखने हन तां अपने अंदर जाती पा जे सिफत करनी है उस्तत करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर आप नड़े गिरीवान में आख्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख विचार कर जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी ए रिश्ता आदि पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी ए माया नरक बन जाएगी आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं उनू वाच उनू वेख तू की कर रहे हैं इसलिए बाबा फरीद जी कहते

मरन वर ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा, ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउणी। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या, भाई गुरु नानक दी बाणी कहदी है कि जो होनी है वह प्रबुल है, जो अकाल पुरख ने लिख दिता वह होके ही रहिंदा है। मनुख दी सियाणप चतराई सियाणपां किते काम ना आई है, तुठा साहेब जो देवे सोई सुख पाई। जो अकाल पुरख वाहिगुरु ने लिखिया वह होके ही रहिंदा है। ता ए गुरु का लाल कहने लगा, महाराज जे पहला पता लग जावे ना ते मनुख अपना बचाव कर सकता है, कोई वड़ी गल नहीं। मैं ए गल नहीं मनदा, मनुख नू पता होवे मुसीबत आ रही है, कोई ना कोई अपने बचन दा उपराला कर लेंदा है। जदों इसने ना मनी तो गुरु का सिख कहन लगा, भाई आओ सामने ताली देख रहे हैं, आज तो सत दिन बाद तैनू उत्थे फांसी चाड़िया जाना है, जा तू अपना बचा कर ले जे कर सकता है। तो महाराज मैं पूरा जतन करांगा, मैं वेखना किवें कोई मैनू इत्थे सूली चढ़ दे। घोड़ा उसके कोल सी, ज्यों दौड़न लगा रात दिन एक करके, अपने वल्लों दूर तो दूर चला गया, पर कुदरत ने मौत ने उसनू घेर के उथे ही ले आउंदा जिथों तुरिया सी। सात संगत बोलो श्री वाहे। सवेर का समा है, ए नगरी आ गई ते इस दे कन्ना विच किसे दे रोण दी आवाज पई। जदों उत्थे पहुंचिया तो की तकिया, सोलह सिंगार कीते हन, ज्ञानिया दे नाल भरपूर एक औरत जो रो रही है। आख्या क्यों रो रही है, कि मैनू राजे ने कढ दिता ते हुण मैं तेरे नाल परनीना है, तेरे नाल व्याह कराउणा। मन विच सोचिया भाई सिख ने तो कहा सी अज दे दिन तेरी मौत आवेगी, पर ए तां कीमती पदार्थ हीरे मोती जवाहरात नाल भरपूर होई होई लड़की और अपने मुंहों कह रही है मैं तेरे नाल शादी करनी है। आख्या पहला आ मुंदरा लै जा, शहर विचों कोई वस्तु ले आ, बड़ी भूख लगी है। जां ए प्रेमी शहर विच आया, कुछ खान पीन दा सौदा खरीदन लगा, ता ए मुंदरा एक राजे दा चोरी होया होया सी, ता इस हलवाई ने इसनू बठा लिया ते जाके दरोगे नू जा दस्या। भाई एक मनुख दे पास राज दरबार दा मुंदरा है ते तुसी हुण उसनू आके फड़ सकदे हो। जा उना ने आके मौके ते फड़ लिया, राजे दे पेश कीता, राजे ने एक नहीं दो नहीं कुछ नहीं सोचिया, आख्या जाओ इसनू सूली ते लटका दे। उचारण करो श्री वाहे। जा सूली चारण लई लियांदा गया, ता जदों देखिया ते ओही ताली है जो गुरसिख ने कहा सी, भाई जो होनी है वह कदे नहीं टल सकती।
जो होनी है हो होके ही रहिंदी है। जदों सूली चरण लगे ता आख्या कोई तेरी आखरी ख्वाहिश, ता आख्या मेरी होर कोई ख्वाहिश नहीं। ओ सामने एक गुरु का शिक रहिंदा है, उनू जे बुला लियाओ ता मैं ओदे कोलों कुछ सवाल पूछना चाहुंदा हां। जां सामने आया नमस्कार कीती, भाई गुरु के सिख तेरा वचन सत होया, जो गुरु की बाणी कहंदी है जो आया सो चल सी सब कोई, आई वारी है ए वारी टलनी नहीं। जदों दरगाह तो सदा आ जांदा है तां ए होनी नहीं टलदी, पर मैनू ए दस के जेड़ी गहनियां दे नाल भरपूर ओ औरत मैनू मिली सी ओ कौन सी, तां गुरु का सिख कहन लगा तू बाणी नहीं पढ़ी, बाणी दे विच लिखिया है जिंद वहोती मरण वर लै जासी परनाए, जिंद वहोती है ते भाई मौत जो है ए

फिर भी महाराज आप क्षमा करो, कृपा करो, मेहर करो, मैनू बख्श लो, मैनू एवी कृपा करके दसो भाई ए खरबूजे मैनू हत्यारा क्यों कहिंदे हन। तां बाबा फरीद जी कहन लगे जदों तू खरबूजे तोड़ेगा ना एक खरबूजा तैनू इस गल दा जवाब देवेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु, जा खरबूजे तोड़ ले। जा ए मालक खरबूजे तोड़न लगा, होर ते सारे सिरियां तो खरबूजे बन गए पर एक कैम रहा। एक विचों आवाज आई हत्यारिया, कितने वेरी तू खरबूजा बनियो ते असी तैनू कटिया, हुण असी बने हां तू सानू कटिया। पर अज कैसा अवसर सी एक रब दा प्यारा, एक रब दा फकीर जे किते सानू अपनी रसना दे नाल ला लैंदा। जे तू एक खरबूजा उस रब दे प्यारे नू दे देंदो तां साडा जन्म मरन कटिया जांदा। इधर फरीद जी मन विच सोचदे हन, मना जे तू भी ग्रस्ती होंदो ते तेरे कोलों कोई ऐसी भुल हो जांदी तां किवें ऐ साडे पैरां ते पै के माफियां मंग के खिमा मंग के गया। ते जे तू भी कोई गलती कर बैठ दो ग्रस्त विच तो तैनू भी इसे तरह पैरां ते डिग के माफी मंगनी पैंदी। इस लई फकीरी फकीरी चंगी है, पर फकीरी प्राप्त करके मनुच्छा जन्म प्राप्त करके जे तू काले लेख ना लिखे तां तेरा संसार ते आउणा सफल है।

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं कीता, क्योंकि फरीद जी कहिंदे हन भाई बचपन खेडां विच बीत गया तां जवानी सिमरन विच बतीत कर लैंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहिंदे ने काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपिया उन्हां नूं भाई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओह नहीं जप सकदे।

जिस गुरु घर का नाम आज बंगला साहब है, ये राजा जय सिंह का बंगला होता है। राजा जय सिंह औरंगजेब के पास अहलकार सी, पर गुरु घर का भी अति प्यार वाला, बड़ा प्यार वाला गुरु का सिख सी। ते अपने घर आके राणियों नू सतगुरां दी बेअंत उस्तत, बेअंत कौतक सुनाया करदा सी। भई वेखो छोटी अवस्था विच किडे किडे वड्डे कम कर रहे हन, किवें संसार दी रख्या कर रहे हन, किवें जलदे बलदे होए संसार नू दुखां विचों कढ रहे हन। तां राणी दे मन विच आया, भला वेखां सही इन्नी तारीफ करदे हन, कोई मेरे भी दिल की गल पुजदे हन के नहीं। ता अपने पति नू बेनती कीती, भई सतगुरां नू जाके अरदास करो, बेनती करो इस ग्रह विच भी चरण पौन आके। राजा जय सिंह ने जाके निम्रता सहित बेनती कीती, महाराज कृपा करो, मेरी राणी भी आप जी दे सोने दीदार करना चाहती है। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह मुस्कुरा पे, कहण लगे भाई वो दर्शन भी करना चाहती है ते साड़ी परीक्षा भी लैनी चाहती है, जरूर चलांगे भाई। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह जी ने जिस दिन आना सी ना महलां विच, ते राणी ने जितनियां भी नौकरानियां कम करदियां सन महल विच, सारियां नूं राणियां वाले कपड़े पवा दिते ते आप नौकरानियां वाले कपड़े पा के बह गई। भई जे सच्चा गुरु होवेगा तां मैनूं लभ लवेगा, ते नाले मैनूं मां आख के मेरी गोदी नूं वी भाग लावेगा, मेरी गोदी विच बैठेगा। धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह छड़ी हाथ विच पकड़ी हुई है, जदों राजा जय सिंह दे महल विच आए ते सारियां बीबियां जिन्हां ने नौकरानियां ने राणियां वाले कपड़े पाए हुए सी, छड़ी मारी आउंदियां ते कहंदे ने ए नहीं राणी, ए नहीं राणी, ए भी है कोई होर सवानी। सारियां तो लंघ के जिथे पटराणी बैठी सी ना गोलियां वाले कपड़े पा के, ते महाराज उन्हूं कहन लगे भई नाले तां तू अपनी गोद विच बठाउणा चाहुंदी है ते नाले साडी परीक्षा लैणी चाहुंदी है, उचारण करो श्री वाहे। राणी दे नेत्रां विचों जल आ गया, ओ मेरा दे साईं, ओ बख्शिशां दे सागर, मैं भुल गई सां, मेरे ते बख्शिश कर, मेरे ते रहमत कर। ता धन गुरु हरकिशन साहब सच्चे पातशाह जी ने इसनू मां करके पुकारिया ते इदी गोदी विच बह के इसनू भाग ला दिते, रंग ला दिते। गोदी विच बैठन दी देर सी, इदे मन दी इच्छा सी के मेरे घर पुत्र होवे, इदे घर कोई औलाद नहीं सी। पर जदों सतगुरु गोदी विच बह गए तां सारियां ही इच्छावां खत्म हो गईयां, ये मंगना भी भुल गई कि मेरे घर भी कोई पुत्र होवे। ते सतगुरां दी एडी बख्शिश होई, एडियां रहमतां होईयां कि अज बंगला साहब जिथे लखां ही संगतां रोज आके शीश झुकाउंदियां हन ते नाम दी दात प्राप्त करके, दुखां दी निवृत्ति करके, लोक परलोक दे सुख माण के जांदियां हन, अज ओही धरती तों जमीन आसमान तों यही आवाजां आउंदियां हन, श्री हर कृष्ण ते आईए।

तू मेरे कम लग जा मैं तेरे कम लग जाना मैनू तू अपना कम दे दे ते मेरा कम तू ले संसार जैसा चल जाए एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा कम का लैन देन करता है जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वो मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार

बेनती करनी है, अरदास ही करनी है, ते किसे छोटे मोटे अगे कानू करनी है। सोई त्याईये जीयड़े सिर शाह पातशाह, जो सब तो पातशाह तो शहन शाह तो वड्डा है। शाह दे सिर ते जो पातशाह है ओदा ध्यान कर, ओदी ओट तक, ओदा आसरा तक।

अपने सुख से ही जग पाते हो। हा हा बाद जिहड़ा कल पहला पढ़िया जा रहा है, आओ ये शब्द सारे रल गए।